0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: और हम चुप ही रहे।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
5: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD9 5VR 01274 491 442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
7: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
6: सोफी ज्वेलर्स
7: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD9 4QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one

0: From full day nursery care for babies and young children to after school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: hoy también.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, पॉन्ड ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवीज,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
5: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
7: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
6: सोफी ज्वेलर्स
7: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: party.
1: You're listening to Bradford Asian Radio.
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
5: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
7: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
6: सोफी ज्वेलर्स
7: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
9: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
5: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD88AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
9: मैनिंगम सुपर स्टोर
10: में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Radio
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
0: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274848777
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
4: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ओक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
8: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
9: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पौंड ब्रेडफोर्ड 9627229622 9627222
8: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
0: Listen on your PC or laptop The best Asian music online
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1400।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायेदारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274488877।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
1: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
2: बालियां अंगूठियां और हार
1: जो दुल्हन करे सिंगार
2: आज ही मामू काके की दुकान
1: खालिस सोने की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
2: आपकी शान
1: हमारी आन
2: क्वालिटी की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स
3: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
2: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
9: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
10: Listen on your PC or laptop The best Asian music online
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोहत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मोहत रिजवी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुर असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274848 8777
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे
3: अभी दिलवाते हैं हाउस एसोसिएशन के किरायादार के हकूक जमीन कूपर हॉल स्टर्स लिस्टर हिल स्पार्क्स रोड B71H 07448 8877

0: दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
0: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
1: बालियां अंगूठियां और हार
0: जो दुल्हन करे सिंगार
1: आज ही मामू काके की दुकान
0: खालिस सोने की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
1: आपकी शान
0: हमारी आन
1: क्वालिटी की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स 121 Oak Lane BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
7: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 81 83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड,

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए

0: आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
1: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
1: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।

0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
4: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
7: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
8: ओपन 7 डेज 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पौंड ब्रेडफोर्ड 9627229627
7: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
2: Listen on your PC or laptop The best Asian music online
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1430।
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की

0: शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम,

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: की दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hills Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मोत्रिस दी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मोत्रिस दी।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM,
7: लिस्टेड इन साइंस पार्क थॉर्नबरी एंड हेयर हिल्स लीड्स, रेजिंग एक्सप्लोरर्स। विजिट www.raisingexplorers.co.uk।
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan?
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 8877
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
7: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95 VR 01274 491 442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
12: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
2: यू आर लिसनिंग टू
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
0: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

जी मोहतरम सामाईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर बहुत ही खूबसूरत ये मौला अली का कलाम जो है वो समात फरमाते हैं और दिलों की धड़कने जो हैं ज़रा इनको संभाल के रखें और दिलों को एक ऐसी खूबसूरत रूहानियत की तरफ लेके जाएं कि दिल शाद आबाद बागो बाग हो जाए। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk है और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। आइए ज़रा ये सुनते हैं।

सूरज चन्न तारे अली अली कर दे सारे गुंचे गुंचे फुल पत्ते अली अली कर दे सारे महापारे अली अली कर दे मुश्किल हाल होवे किस्मत वाल होवे जदो

ये तो अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। ऐसा ये खूबसूरत कलाम है, यकीन करें कि तबीयत तो शेर ही नहीं होनी इस खूबसूरत कलाम से। तो लेकिन क्या है कि वक्त का दौरानिया भी देखना पड़ता है। हमें एक और भी बहुत ही खूबसूरत फरमाइश आई है जी, और हमारे कॉलर्स हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको सलामत रखे, आमीन। और जो उनके खूबसूरत इस वक्त मुझे फीडबैक बैनल अक्वामी सतह पर जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होने की बात है, तो यकीन करें कि ये सब रब्बे करीम की मेहरबानियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह के उसने हमें ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे अता किया है रेडियो स्टेशन का, कि ये मैं हमेशा थ्री वे सिस्टम आपको पता लेके चलती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं माई सेल्फ से निकल के, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडियो माशाल्लाह स्टाफ टीम पूरी, उन सब को आप सराहिए, और जो आप सब हैं और बैनल अक्वामी सतह पर जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे साथ होते हैं, इंशाल्लाह सून वेरी सून इंशाल्लाह आसमा जी आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह जहानत से नवाजा है उनको, बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत हमारी वो शख्सियत है, इंशाल्लाह उनका भी साथ रहेगा। इस तरह से सब इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम मजीद आगे से आगे, अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां दे और चार चांद लगाए खूबसूरतियों में। इंशाल्लाह ताला आप सब, पहले रेडियो टीम, फिर आप सब, फिर कहीं जाके आयशा अख्तर का नाम आता है। तो जी आप सबका भरपूर तरीके से शुक्रिया, जैसे भरपूर तरीके से आप प्रोग्राम में शिरकत किए हुए हैं वैसे ही भरपूर तरीके से आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें ये जो फरमाइश आई है ये एक उन्होंने शेर, उम्मीद करती हूँ कि जो उन्होंने एक शेर बताया है तो मुझे तो यही लगा, तो वैसे बहुत ही खूबसूरत कलाम है। आइए ज़रा ये समाअत फरमाते हैं और दिल की जो धड़कने हैं उनको काबू रखते हुए और बहुत ही खूबसूरती से बस आंखें बंद करके ये खूबसूरत कलाम जो है वो समात फरमाई।

0: एन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
2: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
4: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले.
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं.
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई. जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है.
5: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार.
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज.
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG. फोन 01274477257. दुबई ज्वेलर्स.
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका. पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक. आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे. फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की ख्वारी से. शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL. बुखारी, पसंद आपकी और हमारी. बुखारी
6: का सेहरा सुहाना लगता है.
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR. टेलीफोन 07885428349. अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
4: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स.
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनिंगहम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगहम सुपर स्टोर। मेनिंगहम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेड

मोजेस सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 14:13 AM पर सुबह 9 का प्रोग्राम जो है वो अब सुबह हर 9 बन गया है. अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ज़ौक बाज़ौक और बड़े मुनहमिक प्रोग्राम में रहने वाले अफराद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. और ये जो कलाम आपने सुना, मैं उनकी जो उन्होंने हमारे साथ फरमाइश की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये कलाम के सिलसिले में हमें कॉल्स जो आ रही हैं. और ख़ुद मैं इतनी महज़ूज़ यहाँ पे बैठ के हो रही थी कि ये है ही, इसकी लिरिक्स की डेप्थ में जाएं तो वाकई हमारे ज़ौक को तस्कीन मिलती है. और क्यों ना हो भाई, आप सबके ज़ौक को तस्कीन मिले तो यही तो मेरे प्रोग्राम का महसल होता है. जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट bradfordnationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677. जी बिल्कुल, हमें जो हमारे ऊपर चॉइस का छोड़ा गया था, एक तो अभी लेटेस्ट कलाम जो वाकई ओह क्या बात है, मैं अभी ये पूरा शेर जो है मेरे सामने है, तो इन्होंने कहा जो हमें फरमाइश की गई, तो उन्होंने बस सिर्फ यही कहा था कि बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ, उन्होंने बड़ा गुस्ताख हूँ, सज़ा चाहता हूँ, या कुछ ऐसे. तो लेकिन फिर ये कलाम पूरा फिर निकला कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, भरी बज़म में राज की बात कह दी, भरी बज़म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ. जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम, ये अलामा इकबाल हमारे शायर मशरक और जो दरवेश दरवेश सिफ्त इंसान और शायर मशरक हैं, उनका कलाम ही हो सकता है जो इतनी खूबसूरती से फिर पढ़ा गया. तो ये खूबसूरतियाँ रानाइयाँ जो हैं वो जारी व सारी रहेंगी. इस वक्त हम ये एक जो है पंकज दास साहब की, मैं उन्होंने हमारे ऊपर श्याम साहब ने छोड़ा है कि अच्छी सी कोई अच्छा सा गीत सॉन्ग तो दौर निकल चला गज़लों का. और आपको पता है कि मैं पहले भी बताया था पंकज दास की गज़लें बड़े शौक से सुनती हूँ, और कभी गुरदास मान की होती थी, तो खैर अब थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज किया. तो आई होप यू विल इन्जॉय दिस गज़ल इंशाल्लाह. तो अभी सुनते हैं, थोड़ा धीरज रखिए.

जी ये गजल खूबसूरत सी हम नाम करते हैं श्याम जी के, कि जिन्होंने हमसे हमारे ऊपर चॉइस छोड़ी। आई होप सर नहीं, वो कहते सर नहीं कहना है जी, आई होप श्याम साहब यू विल इंजॉय दिस गजल, इट्स ब्यूटीफुल।

0: चलाइए और दुल्हन के एक घर घर पहुँचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन के पे धमाका, सस्ती कीमतों पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोज़
2: जाने।

0: लाइए और दुल्हन के चाचे घर घर पहुँचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन के पे धमाका सस्ती कीमतों पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोज़
2: जगह आने

0: से घर घर पहुंचाइए
1: आपकी शान
0: हमारी आन के पे धमाका सस्ती कीमतों द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात
2: रोजाने मुकर्रदीन का सिलसिला किया उनकी तो भी बुलाना है ब्राइक ना है वो किसी भी जगह पे चले जाए।

एक मतवाजन फिजा भी कायम रखनी है, यकीन करें मेरी तो पूरी कोशिश होती, मगफरत भी अल्लाह ताला से तलब करनी है, जिंदगियों को चलाना है, हकीकतों को समझना है और फिर अल्लाह से ही दुआ करनी है कि वही हमें स्ट्रेट पाथ पे रखे। क्योंकि बंदों से जुड़े जो मामलात होते हैं ना मेरे रब को वो पसंद नहीं। जब तक कि हम किसी इंसान से, चाहे उसकी हमने चुगली खाई है, बोतान लगाया है, उससे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, ये बात जहन में रखनी है बस, कि जब तक इंसानों से रिलेटेड मामलात में आप उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते, उनकी दिल आज़ारी की तलाफ़ी नहीं कर देते, फिर रब्बे करीम भी माफ़ नहीं करता। ये बात याद रखनी है। वो बड़ी बड़ी बातें तो हैं कि जी मैंने इतने हज किए, मेरी क्या ज़रूरत जी, मैं अपने हाथ भी नंगे कर जाऊँ, मैं तो ग्लव्स पहन के, मैं पूरी पर्दे की पाबंद, अरे वो तो पर्दा नहीं करती हैं, मैंने उनकी महफिल में नहीं बैठना, मैंने उनको मुँह ही नहीं लगाना, वो मैंने नहीं उनसे बात करनी क्योंकि वो पर्दा नहीं करती हैं, वो ये करती हैं, वो करती हैं, मैं तो रातों को तहज्जुद, मैंने ये मी मैं माई सेल्फ के। आप जब हम कटहरे से बाहर आएंगे, इंसानियत शफाफ जब नजर आएगी, तो यकीन करें कि फिर जो वो खुशी मिलती है ना, वही असल में खुशी है।

कितने खूबसूरत हम पैकेज में बंधे हुए हैं कि रास्ते से पत्थर भी हटा दें तो हमें अजर मिल जाता है, किसी का दिल खुश कर देने से हमें अजर मिलता है, और दिल से किसी ने दिल से कलिमा तैयबा पढ़ लिया तो वो बख्शा जाएगा, दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कभी ये आयत मुबारका का पढ़ के देखिएगा कि दिल से जिसने पढ़ ली आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते। इतने हमारे खूबसूरत जो पैकेजेस हैं इस्लाम के, इतना फ्लेक्सिबल, इतना खूबसूरत, इतना इंसानियत का दर्स देने वाला खूबसूरत मुरक्का हुस्न व जमाल जो है वो हमारा खूबसूरत दीन। अल्लाह करे हमें इसकी समझ आ जाए, अल्लाह करे हम प्रैक्टिकली जो हैं इबादात का मान बंदे तेरा और तेरे रब का मामला है, इन इबादात को बंदों के ऊपर मत अप्लाई, बंदों की कैटेगरी में रख के उसी कटहरे में जांच परख करने का नाम ही इंसानियत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें ये बहुत ही अच्छी लगी होंगी, माशाल्लाह हमेशा की तरह। मुझे पता है मेरे बाज़ौक सामईन इकराम जो हैं वो बहुत खूबसूरती से इस सफ़र में हमारे साथ रहते हैं, और मैं हमेशा की तरह सारी रेडियो की टीम को, आप सबको, और अगर मेरे ज़रिए से अल्लाह ताला कोई अच्छा काम ले रहा है तो मैं उसकी ममनून और मशकूर मेरे रब की कि आप सब ने जो है इस वक्त मेरा मकसद जो था कुछ ऐसी माशरती बुराइयां जो हैं उनको सामने लेके आना, फिर उनसे किनारा कशी कैसे करनी है, बचना कैसे है, हमारे लिए प्रैक्टिकली और हमारी यंग जनरेशन को उनसे बचने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं, गहराई में आप सोचेंगे तो यकीनन मेरी बातों का जवाब मिलेगा, और यही महसिले गुफ्तगू है। और बहुत ही अल्लाह ताला की एक मैं नाचीज़ सी बंदी और सामईन इकराम आप सबकी बहुत शुक्रगुजार कि आप हमेशा मुझे अच्छी फीडबैक देते हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, और अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो आवाज़ पहुंचती है तो उन सब मेरा मेरी फैमिली इंक्लूडिंग वो मुझे फ़ोन पे बच्चे स्पेशली बताते रहते हैं, कुछ तो ऐसे खालाब गाने तो कुछ कहते हैं खालाब तो प्रोफेशनल प्रेजेंटर की तरह, जब उनके अल्फाज मेरी देखे मुझे सराहने के, खालाब तो ना फुफो फुफो वाला आप तो ना जो प्रोफेशनल प्रेजेंटर्स होते हैं वैसे बात करती हैं, अच्छा भाई ओके उनकी तरह ही सही, चलो कोई बात नहीं।

बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी फीडबैक भी मिलती रहती है, तो इंशाल्लाह कोशिश होती है कि हम सब मिलके ये खूबसूरतियों का सफ़र जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से तय करें। फ्राइडे होता है जी हमारा इंशाल्लाह वो सिलसिला, अब भी फिर आप कहेंगे कि मेरा बस चलता तो वो इतने खूबसूरत कलाम है ना वही लगाती, लेकिन आप सब का भी फिर ज़ौक देखना होता है, आप सब की फिर फरमाइशें भी होती हैं, और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एग्रीड होती हैं हमारी एक दूसरे के साथ फरमाइशें जुड़ी होती हैं। मज़ीद अब वक्त क्या लूँ कि आप ख़ुद बताएं कि आप इस वक्त क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम में हमने जो है बहुत से कहते हैं खूबसूरत कलाम भी सुने और बहुत से भी, अब देखें ना वो कुछ सॉन्ग्स हैं भाई, मैं कुछ जगहों पे आके टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस कि मुझे लगता है कि मैं कैसे बात संभालते हुए बात में से निकल जाऊं, बहुत एहतियात का मामला होता है, बस यही है रियलिटीज ऑफ लाइफ जिन्हें फेस करना है। क्या ख्याल है आप सबका, आप ज़रूर इस गुफ्तगू में शामिल रहें।

इस वक्त मौजूद सामरीन इकराम ब्रफरेशन रेडियो 1430 AM पर हमारा ये प्रोग्राम जो है एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। हमारी वेबसाइट ब्रफरेशन रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। मेरे सामने दो शख्सियात हैं, तो सोचा कि एक शख्सियत को चले प्रोटोकॉल देते हैं, पहले उनका सॉन्ग जो है वो सुनते हैं, और एक मेरी फेवरेट भी जिसे कह लें बड़ी सादा सी है तबीयत उनकी, लेकिन कमाल की गायिका है। और वो खुद भी कहती होती हैं, जब कभी इंटरव्यू भी दें तो वो कहती हैं प्लीज मुझसे ज़्यादा ओके सवाल नहीं पूछने, मैं तो सिंपल सवालों का बस जवाब देने वाली। आप ज़रूर उनकी भी पर्सनालिटी से महसूस होंगे। चले आए एक खूबसूरत सा गीत जो है वो हम इस हस्ती ही एक कह लें, बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती के आप वाकई उसको खराज तहसीन पेश करेंगे। चले हम भी खराज तहसीन पेश करते हैं इस हस्ती को, और ये गाना जो है वो सुनते हैं।

मोजिस सामईन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM पर पेश किया जाने वाला ये खूबसूरत सा सुबह नौ प्रोग्राम जो है वो आप सबके लिए पेश कर रही थी और कर रही हैं आयशा अख्तर। हमारी वेबसाइट brafreshanradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। सबसे मुनफरिद और खूबसूरत बात ये कि आज हमें बहुत से कॉलर ने बैन अलावामी सतह पर भी ज्वाइन किया, कुछ की मैं कॉल्स जो हैं कुछ टेक्निकल यहाँ पे ऐसे इंतजाम हैं कि मैं उनकी ले नहीं सकी, मेरे फ़ोन पर उनसे राबिता रहा। तो इंशाल्लाह सारा जो सिलसिला है वो बहाल करेंगे सून इंशाल्लाह, ऑब्वियसली अपनी रेडियो की टीम से रहनुमाई लेते हुए। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि फीडबैक जो मुझे मिल रही है, ये यकीन करें कि आप सबका हुस्ने जिसे कहते हैं, आपका हुस्ने नज़र और खूबसूरतियों का, आपके जहन का, दिलो दिमाग का सफ़र के जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिसे कहते हैं जिला बख्शने का एक मौका मिला, एक चांस मिला। और हमारे पास अभी जो हमारे मोहतरम कॉलर पाकिस्तान से जिन्होंने ज्वाइन किया श्याम साहब, ये इनकी जी एक फरमाइश है, तो जाते जाते इनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूंगी, लेकिन माजरत खां हूँ वो सर में कहते जी सर नहीं कहना, माजरत खां हूँ श्याम जी के अगर कोई ऐसी मतलब इसमें से फिर ऑब्वियसली हमारी जो ब्रेक होती है उसको जारी करना होता है, तो जितने भी अशार आप सुन लें तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज है। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज जैसा हमारे जो कॉलर हैं पाकिस्तान से, उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह फ्राइडे मेरा प्रोग्राम सुनेंगे, ये

रहा है, मुझे एक शेर जो है वो शाम जी की गजल के नाम, और इंशाल्लाह फ्राइडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये एक खूबसूरत सी जाते जाते गजल जरूर सुनिए।

0: the hope of the past, the need of the present, and the demand from the future.
1: Radio Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
2: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
3: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं.
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई. जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है.
3: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार.
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज.
3: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257. दुबई ज्वेलर्स.
2: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक. आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे. फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL. बुखारी पसंद आपकी और हमारी. बुखारी
4: सुहाना लगता है.
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
2: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR. टेलीफोन 07885428349. अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3.
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स.
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है, आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274-201679.
3: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है, इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स, लिस्टर हिल्स साइंस पार्क, कैंपस रोड, ब्रेडफोर्ड, BD71HR।
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
5: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
7: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
6: सोफी ज्वेलर्स
7: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन
2: लिसन ऑन योर पीसी और लैपटॉप द बेस्ट एशियन म्यूजिक ऑनलाइन
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3 4 9, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

ये बेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर के ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वहबाब इनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ़ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 3066 77।

तो दोस्तों, ये था हमारा तोहफा हमारे उन तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और उसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है। जो अहबाब तशरीफ ला चुके हैं उनका जिक्र खैर हो जाए। हमारे हमराह मौजूद हैं रियासत साहब हडर्सफील्ड की हसीन फ़जाओं से, वक़ार मियाँ वेकफील्ड से, भगत सिंह साहब लीड से, नज़ीर अहमद साहब लिया पंजाब पाकिस्तान से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, सुमैरा बिटिया हमारी बावची खाने की रानी ब्रैडफोर्ड 3 से, और इन तमाम अहबाब ने आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत है और ये मोहब्बत है नज़ीर अहमद साहब की, जो लिया पंजाब से तशरीफ़ लाकर हमेशा एक ही इनका पैगाम होता है, सदा सलामत रहें। आपको और आपके तमाम सामईन और नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम हमने वो पहुंचा दिया है, और हम नहीं चाहते कि आप जिस मोहब्बत से आते हैं आपको खाली हाथ रुख्सत किया जाए। तो आपके लिए मैंने अपनी पसंद का ये गीत मुंतखब किया है नज़ीर। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको अपने जमान में रखे, सेहत से रखे, ढेरों दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। ये मेरी पसंद का गीत।

0: Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274 491 442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane BD9 4QU 01274 056 014 सोफी ज्वेलर्स
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
4: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
8: मैनिंगम सुपर स्टोर
9: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
11: और आइए दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं वेकफील्ड जहां वकार साहब मौजूद हैं और आज वो स्लाव लंदन का सफ़र कर रहे हैं कहते हैं कि हम और हमारे अहले खाना आपके प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं ये लोग तो घर पर सुनते रहेंगे मैं इंशाल्लाह बकाया प्रोग्राम दौरान सफ़र सुनूंगा और सुनना चाहा है इस हसीन खूबसूरत और मुस्कुराती फैमिली ने ये गीत इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे नज़रे बद से बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे पसंद लेकर हाजिर हूँ आपकी आमद का वक़ार मियाँ शुक्रिया जीते रहिए हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी

आपको बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, नज़ीरा को दीन को सब्र जमील अता फरमाए। जज़ाकल्लाह हाथ उठाने के लिए। और ये गीत था, फरमाए ये रहा वो गीत

0: खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटले हिल ब्राडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम की जीनत तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 66 77।

0: दोस्तों, इससे पहले कि हम आपका पसंदीदा सेगमेंट पेश करें, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और अपनी मेहमान का तारुफ कराएं, हमारे हमराह मौजूद हैं कराची पाकिस्तान से रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा, और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में पेश किया है। कहते हैं कि कराची में आज रिकॉर्ड गर्मी है। मियाँ, हमारे यहाँ भी आज शदीद गर्मी है, टेम्परेचर 20-21 सेंटीग्रेड है। आप देख रहे हैं, मैं हाफ स्लीव में प्रोग्राम कर रहा हूँ, और यहाँ ऐसा मौसम और गर्मी की आमद को दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। कई महीनों के इंतज़ार के बाद कभी कभी ऐसे दिन आते हैं। बहरहाल, खुदा की कुदरत है, वहाँ पर गर्मी को जहमत समझा जाता है और यहाँ पर इंग्लैंड में गर्मी को रहमत समझा जाता है। तो ये फ़र्क है एक नुक्ते का। बहरहाल, आज हमारी मेहमान हैं बहुत ही मशहूर अदीबा, राइटर, निसाई लहजे की ये खूबसूरत शायरा, और हुकूक़ निस्वानियत के लिए लड़ने वाली ये खूबसूरत शायरा, जिसने दुनिया के चार कोनों में अपने कलाम से लोगों के दिल गरमा दिए और दिलों में बसेरा कर लिया। और ये मशहूर मारूफ शायर जॉन एलिया की शरीक हयात भी रहीं, बाद में अलहदगी हो गई, लेकिन तादम आखिर मिलना जुलना उसी तरह से था तलाक के बाद भी। इस अजीम शायरा का नाम है किश्वर नाहिद। आप दुनिया के चार कोनों में अपने निसाई अंदाज और निसाई लहजे की वजह से ख्वातीन की नुमाइंदगी करती रहीं। बेशुमार कुतुब हैं आपकी, मैं लिस्ट भी नहीं बता सकता, और बेशुमार अवार्ड से आपको नवाजा गया। तो तशरीफ ला रही हैं, वजूद-ए-ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग में आज हमारी मेहमान शायरा किश्वर नाहिद। दोस्तों, किश्वर नाहिद आप तक अपना कलाम पहुंचाएं, मैं आपको याद दिला दूं कि ये वो अजीम शायरा हैं जिन्होंने एक मुनफरिद अंदाज से अपने कदम जमाए, और बहुत कोशिशों और मेहनतों के बाद अखबार जहां से वाबस्ता रहीं, मदारत के फ़ज़ाइल भी अंजाम दिए, और बहुत ही खूबसूरत शायरा हैं। तशरीफ ला रही हैं किश्वर नाहिद। आज हम इन्हें अपने इस मेहमान बनाने में, हमारे लिए ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है कि आज ये हमारी बज़्म की ज़ीनत और इफ्तिखार में इजाफा कर रही हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं।
1: तक ये नहीं पता था कि बरेली इधर है और राय बरेली उधर है, और मैं जिस पाकिस्तानी से बात करती थी वो कहते तुम्हें गलत बताया गया, तुम्हें कहीं और ले जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये डर होता था लोगों को कहीं और चले जाओगे, और मैंने कहा मैं तो 30-40 बरस से यहाँ आ रही हूँ, मैंने हर चौकट देखी है, हर दरवाजा देखा है, और मुझे सब अपने जैसे लगे हैं, नहीं याद आओगे। मैंने हर चौकट देखी है, हर दरवाजा देखा है, और मुझे सब अपने जैसे लगे हैं।
2: वाह,
1: वो रोते भी मेरी तरह हैं और हंसते भी मेरी तरह हैं, और बात करते हुए बीच में रंजीत की तरह हंसते भी मेरी तरह हैं। मुझे इस जगह पे और इस शहर में लाने वाला यही मुझे याद आओगे, इसलिए नहीं याद आओगे कि भूख मिट गई है, इसलिए याद आओगे कि आपको भी मेरी तरह रोना और मेरी तरह भूख लगती है, और आपके और मेरे दरमियान गुर्बत का रिश्ता है। वो गुर्बत का रिश्ता जिसमें हमारी पुराने जमाने की औरतें और मेरे जमाने में मेरे थरपारकर की औरतें पतीले में पानी और पत्थर डाल के बच्चों को ये सुला देती कह के कि हंडिया पक रही है। मेरे लोगों, तुम और मैं एक जैसे हैं तो हम दोनों एक दूसरे से लड़ना क्यों चाहते हैं? और हम साये का रिश्ता दुनिया की हर कौम हर मजहब में बताया गया है कि घर वालों से ज्यादा होता है। तो फिर ये तो बातें मैं ऐसे ही करने लगी, मुझे नीरज जी ने कहा कहते हुए 16 साल की, जैसे कि मैंने रंजीत ने बताया, 16 साल की उम्र में अम्मा से छुप के अब्बा से छुप के सबसे छुप के शेर लिखती थी और मार खाती थी, क्योंकि जवाब ये आता था कि क्या खानदान में कभी किसी ने शेर कहे हैं कि तुम शेर कह रही हो? लेकिन मेरी बहनें और मेरी बच्चियां सुन ले कि मार पड़ती रहे और तुम लिखती रहो। मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं बड़ी थानेदार हूँ, वहां की यहाँ सामने थानेदार बैठे हैं इतने सारे, तो मैं सिर्फ एक बात कह के आपको वो नज्म सुना देना चाहती हूँ जिसको अशोक साहब बार बार जिक्र कर रहे थे। वो नज्म मैंने आज से 30 बरस पहले लिखी थी, जब औरतों को एक तरफ मार पड़ी थी कि हम एक देना चाहते थे रिकमेंडेशन टू हाईकोर्ट, और दूसरी तरफ मौलवी जो थे उन्होंने हमारे खिलाफ बयान दिया था कि जो औरतें इस जुलूस में शरीक थी उनके निकाह खत्म हो गए। तो हमने कहा भाई हमारे मियाँ तो अल्लाह का शुक्र है फुर्सत में आ गए, हमारे बगैर जिंदगी गुजारेंगे। और हमारी खबर इतनी सी थी कि औरतों का जुलूस था जिसके ऊपर डंडे पड़े और उनकी जूतियां रह गई और उनके दुपट्टे रह गए, और वो तो अस्पताल में थी और जेल में थी। तो जेल से बाहर वापस आके मैंने ये नज्म लिखी, यह हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाए न जान बेचे न सर चुकाए न हाथ जोड़े। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचे जो लोग वो सरफराज ठहरे, नियाबते इम्तियाज ठहरे वो दावरे अहले सास ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताकुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है कैसर खालिद वो दीवार उठाने की जिद ना करना, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद ना करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं न जान बेचें न सर चुकाएं न हाथ जोड़ें।
3: वाह क्या कहने।
1: अच्छा ये तो 30 बरस पहले की मेरी मेहनत थी या मेरा जज्बा था, अब मैं कुछ और हो गई हूँ।
3: आपा वो जो बच्चियों से डर गए वो सुना?
1: वो जरूर सुननी है।
3: हाँ वो जरूर सुनी।
1: उसने भी मुझे बहुत तंग किया क्योंकि कुछ 50 मुल्कों में उसका तर्जुमा होके छप चुका है और सबने मेरी तस्वीर ऐसे लगाई है कि आपके थाने में भी वो रिपोर्ट आ सकती है। वो जो बच्चियों से भी डर गए, ये स्वात की बच्चियों के स्कूल 270 जब तोड़े गए थे और मेरी और मलाला की वहां मुलाकात हुई थी, उस वक्त मैंने ये नज्म लिखी थी। वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो जो इल्म से भी गुरेज पा, करें जिक्र रब्बे करीम का, वो जो हुक्म देता है इल्म का, करें उसके हुक्म से मावरा ये मना दिया, ना किताब हो किसी हाथ में ना ही उंगलियों में कलम रहे, कोई नाम लिखने की जाना हो ना हो रस्में इसमें जना कोई, जना मतलब औरतों का। वो जो बच्चियों से भी डर गए, करें शहर शहर मना दिया कि हर एक कद हयानुमा को नकाब दो, कि हर एक दिल के सवाल को ये जवाब दो, नहीं चाहिए कि ये बच्चियां उड़े तायरों की तरह बुलंद, नहीं चाहिए कि ये बच्चियां कई मदरसों कई दफ्तरों का भी रुख करें, कोई शोला रू कोई बासिफा ہے کوئی تو سینے حرم ہی اس کا مقام ہے، یہی حکم ہے، یہ کلام ہے،
3: یہ حکم ہے،
1: اور آخری بندے جو آپ اور میرے درمیان مشترک ہے، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں، انہیں دیکھ لو، انہیں جان لو، نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں، رکھو یہ حوصلہ، رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود میں۔
4: ہائے ہائے، واہ واہ واہ،
1: مجھے اجازت، اچھا آپ دو چار شعر سنا دیتی ہوں تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ میں غزل بھی لکھتی ہوں۔ ہم نے غم کھینچا تھا، ہم نے غم کھینچا تھا، ایزاد طلبی، غم کھینچا کا مطلب بہت دیر تک غم ہمارے ساتھ رہا پر کچھ کہا نہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا، وہ تو کہتا رہا۔ ہم نے غم کھینچا تھا، ایزاد طلبی کم نہ ہوئی، دل میں طوفانہ رکا، در بدری کم نہ ہوئی۔ ہم نے غم کھینچا تھا، ایزاد طلبی کم نہ ہوئی، دل میں طوفانہ رکا، در بدری کم نہ ہوئی۔ ہم نے رسوائی بھی پہنی، تجھے رسوا نہ کیا، ہم نے رسوائی بھی پہنی، تجھے رسوا نہ کیا، اے میرے شہر تیری بے خبری کم نہ ہوئی۔ اور دل کی دہلیز مٹی، در نہ رہا، گھر نہ رہا، فتنہ سامانوں کی پر فتنہ گری کم نہ ہوئی۔ ہم تو طوفان بدل چلتے رہے، رکتے رہے، ہم تو طوفان بدل چلتے رہے، رکتے رہے، پیاس بجھتی رہی پہ تشنا لبی کم نہ ہوئی۔ فاصلے کم نہ ہوئے، شوق سفر کم نہ ہوا، فاصلے کم نہ ہوئے، شوق سفر کم نہ ہوا، اس سے ملتے رہے، بیگانہ روی کم نہ ہوئی۔ ایک غزل جو بہت طویل ہے اور اس کی لمبائی بھی اپنے آپ ہے، وہ میں دو شعر آپ کو سنا دوں اس کی۔ اجلی شام میں لپٹا وعدہ تازہ میرے اندر تھا، اجلی شام میں لپٹا وعدہ تازہ میرے اندر تھا، باہر کیسے جاتی میں
4: دروازہ
1: میرے اندر۔
4: کیا کہنے، ارے کس سلیقے سے کہا ہے، واہ واہ واہ۔
1: اجلی شام میں لپٹا وعدہ تازہ میرے اندر تھا، باہر کیسے جاتی میں دروازہ میرے اندر تھا، اور بھول نہیں سکتی وہ ساتھ وہ منظر کسی عالم میں، شام شفق تھی اور بکھرتا غازہ
4: میرے اندر تھا۔ واہ واہ واہ۔
1: اور آخر میں چار شعر جو اکٹھے ہی ہیں
4: جی،
1: میری آنکھوں میں دریا جھولتا ہے، میری آنکھوں میں دریا جھولتا ہے، یہ پانی اب کنارا ڈھونڈتا ہے، یہ پانی ریت کی تہ سے گزر کر، یہ پانی ریت کی تہ سے گزر کر، تعلق ہے
4: رشتہ
1: رستہ ڈھونڈتا ہے، اور تعلق کو نہ سمجھو جاویدانی،
4: آئے ہائے،
1: تعلق کو نہ سمجھو جاویدانی، یہ آئینہ ہوا سے ٹوٹتا ہے، تعلق کو نہ سمجھو جاویدانی،
4: یہ آئینہ ہوا سے ٹوٹتا
1: ہے، یہ آئینہ ہوا سے ٹوٹتا ہے، اور ہماری پیاس رخصت چاہتی ہے،
4: آئے ہائے،
1: ہماری پیاس رخصت چاہتی ہے، پیالہ
4: اب ہوا سے
1: ہاتھ سے اب چھوٹتا ہے۔
4: بہت شکریہ آپا۔ دوستوں،
0: اور یہ تھی نسائی لہجے کی خوبصورت شاعرہ محترمہ کشور ناہید۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کا کہ انہیں یہ کلام بے انتہا پسند آیا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ آپ کو بھایا. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے. ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور حسن اتفاق کہیے کہ آج جو رضوان رضوی اور امرین نے غزل سننا چاہی ہے, یہ میری پسندیدہ ترین غزلوں میں سے ایک غزل ہے اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ایک بے انتہا خوبصورت سا شعر آپ کے نام کر رہا ہوں, حضرت کرشن بہاری نور کا, کہ گزرے جہاں جہاں سے وہ پلٹے ہوئے نقاب, ایک نور کی لکیر سی کھشتی چلی گئی. کیا حسن ہے, جمال ہے, کیا رنگ و روپ ہے. کیا حسن ہے, جمال ہے, کیا رنگ و روپ ہے. وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ بہت خوبصورت کلام, اعلیٰ انداز اور بہترین شاعری, عمدہ ادائیگی کی بات سب برحق ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو آئیے آپ کی پسند کی غزل آپ کی نظر کرتے ہیں, قبول فرمائیے. آپ ہی کی پسند نہیں, یہ میرے بھی دل کے بہت قریب ہے. رضوان میاں.

वाह वाह साहब, गज़ल सुन के दिल खुश हो गया। क्या खूबसूरत गज़ल तहरीर की है जावेद अख्तर ने, और इसके जो मौसीकार हैं बहुत ज़्यादा मारूफ नहीं हैं, कुलदीप सिंह साहब, क्या मौसीकी तरतीब दी है उन्होंने, और सहरंगेज आवाज़ जगजीत सिंह की हो, तो ये सयातशाह हो गया। मैं भी इंतहा शुक्रगुज़ार हूँ गज़ल को मुंतखब करने के लिए रिजवान रिजवी आपका, और मुझे भी अपनी दुआओं में आप दोनों याद रखिएगा। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद हम आपको लिए चलेंगे मिडिल्सब्रा, ब्रेडफोर्ड से हमारी बिटिया सुमेरा बिटिया का तोहफा, बावची खाने की रानी। कह रही मैं पका रही हूँ और दो डिशेस बना चुकी हूँ, बता दूँ डिशेस, चूज़े का सालन ये बना चुकी हैं और लस्सी नी खीर, लस्सी नी कड़ी। यार ऐसी बातें किया नहीं करो, प्रोग्राम नहीं होता फिर। जीती रहो मेरा बेटा, हमारी ढेर और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कमर्शियल के बाद तुम्हारा तोहफा तुम्हारी प्यारी प्यारी करुण के नाम करेंगे। और तशरीफ़ लाए हैं परदेसी मजीद, आप हमारे हमरा खादियाँ गुजरात पाकिस्तान से हैं, और तमाम ही सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। देखते हैं आज आप क्या सुनना चाहते हैं, और बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब।

0: Radio. 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
4: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
8: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
9: ओपन 7 डेज 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229622
8: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
13: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी मैं हूं रिफत अब्बास जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी बज में अभी अभी तशरीफ लाए हैं परदेसी मजीद साहब खारियां गुजरात पाकिस्तान से और सुनना चाहते हैं एक गीत जो हम ज़रूर उनकी नज़र करेंगे लेकिन अभी हम वादा कर बैठे हैं बावची खाने की रानी हमारी प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रेडफोर्ड 3 से कि उनकी प्यारी प्यारी कज़न्स के नाम जो हमें मिडिल्सब्रा में सुन रही हैं उनकी पसंद का गीत पेश करेंगे सो हम उस वादे को इफ़ा कर रहे हैं और सुमेरा आपका तोहफ़ा आपकी प्यारी प्यारी कज़न्स के नाम अल्लाह ताला आपकी ये मेल मोहब्बत क्यों ही कायम और दायम रखे और नज़रें बद से बचाए

दोस्तों ये पसंद थी हमारी प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 से। लगता है आज उनका सालन जल गया है, ऐसा दिल जला गीत अपनी कजन से नाम सुना है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि सालन लग गया हो आज। खैर कोई बात नहीं, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। अब हम आपको लिए चल रहे हैं खाड़ियाँ, गुजरात, पाकिस्तान, जहाँ से हमारे मोहतरम लिसनर जनाबे परदेसी मजीद साहब मौजूद हैं और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में बतौर ख़ास जनाब शकील साहब, खालिद साहब और अय्यूब चौहान साहब आपकी नज़र किया है। चलते हैं, सुनते हैं आपकी पसंद कैसी है। आमद का बहुत शुक्रिया परदेसी मजीद।

0: दोस्तों ज़रा कमर्शियल मियाँ ताख़ीर से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और तशरीफ़ ला चुके हैं खालिद सलीम मीर साहब, जिनसे आपकी मुलाकात होगी कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद।
1: 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online. You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन
8: 0 के पास खूबसूरत जेवरात शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: क्वालिटी, बेस्ट सर्विस, ओपन सेस
9: बेटली ब्रैडफोर्ड DA8 8NG4।

0: हर शय मिले, बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, VD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: और दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं हॉलैंड। कई दिनों की ताखीर के बाद हमारे बहुत खूबसूरत लिसनर जनाब खालिद सलीम मीर साहब हमारे हमराह मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
9: अस्सलाम वालेकुम जनाब।
8: वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई, कैसे हैं आप?
9: मैं ठीक ठाक हूँ। आपके सब सामईन को, शकील साहब को, अहले अमरोहा को और सब बालोग सामईन को आप समेत सलाम व आदाब और एक शेर अर्ज करता हूँ।
8: अता कीजिए, बिस्मिल्लाह।
9: कहते हैं, उठा रहा हूँ जमाने की सख्तियाँ कब से,
8: उठा रहा हूँ जमाने की सख्तियाँ कब से,
9: उठा रहा हूँ जमाने की सख्तियाँ कब से, मेरा ख्याल मेरे आशना नहीं करते।
8: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह।
9: और जमाल आसानी की गजला बड़ी नायाब किस्म की।
8: अता कीजिए, अता कीजिए।
9: अब वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे।
8: वाह वाह वाह वाह।
9: और नई ऋतु में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, वो जख्म ताजा हुए हैं जो भरने वाले थे।
8: वाह वाह वाह वाह।
9: और जमाल आसानी कहते हैं, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की,
8: ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की,
9: तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे।
8: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह।
9: हजार मुझसे वह पैमाने वसल करता रहा, पर उसके तौर तरीके मुकरने वाले थे।
8: वाह वाह वाह वाह।
9: हमें तो फख्र था शीराजी ये बंदा है जहाँ बंदी है जहाँ पर, हमारा क्या है कि हम तो बिखरने वाले थे।
8: वाह वाह।
9: तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे।
8: वाह वाह वाह वाह।
9: उसे एक छोटे से कस्बे में रेल ठहरी नहीं, वहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे।
8: वाह वाह वाह वाह।
9: वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। और रफी साहब का एक

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: थे वो तुम न थे, बहुत बहुत सीरियस और बहुत कमाल गीत है रफी साहब का।
0: मैं आपकी तरफ से तमाम सुनने वालों के नाम करूंगा इंशाल्लाह,
1: सब सामीन का नाम लगा दे मेरी तरफ से और सबको सलाम व आदाब दोबारा।
0: ओके अल्लाह हाफिज, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और दोस्तों आपसे हमारे मोहतरम खालिद सलीम मीर साहब हॉलैंड से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और नज़रे बद से बचाए। अब हम आपको लिए चल रहे हैं ओल्डम, जहां मौजूद हैं मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बनले, शकील भाई आपका तोहफ़ा, फिर आपकी नज़र करेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं ये अपने बनले तक। अय्यूब चौहान साहब, आपकी मोहब्बत हो, चाहत हो, प्यार का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया।

और दोस्तों, ये पसंद थी अय्यूब चौहान साहब की। मुझे उम्मीद है कि उन्हें मज़ा आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं उस गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाबे शकील साहब ने। शकील साहब, आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करवाया जिसके लिए माजरत खां हूँ, लेकिन आप जानते हैं क्यों, समझदार आदमी है, तोहफा हाजिर है। आपकी आमद का और आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया।

0: दोस्तों अभी अभी हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं दो नए मेहमान। शहजाद साहब तशरीफ़ लाए हैं नॉर्थ हॉर्ड लंदन से, और तशरीफ़ लाए हैं जनाब सिराज मुनीर साहब डोंकास्टर सिटी से। हम दोनों अहबाब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, और आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफ़ा भेजा है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं हॉलैंड से आए हुए उस तोहफे की जानिब, जो बहुत मोहब्बत प्यार और चाहत से आपके लिए लेकर आए हैं हमारे मोहतरम जनाब खालिद सलीम मीर साहब। सो उनका तोहफ़ा लेकर हाजिर हैं। खालिद सलीम मीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर इसकी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ाते हैं। आपका तोहफ़ा आपकी जानिब से तमाम सामीन और नाज़रीन के नाम।
1: अभी आप ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के स्टूडियो कलाकार से वाद्य संगीत सुन रहे थे। अब आप पूरन चंद कश्मीरी से एक गीत सुनिए। पूरन चंद कश्मीरी।

और दोस्तों अब वक्त हुआ है हमारी काबिल सदराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा जो आगाज़ प्रोग्राम में ही तशरीफ़ लाकर इस बात की गवाही दे जाती हैं कि वो प्रोग्राम से लुफानंदोज़ हो रही हैं, लंच ब्रेक पर हैं और वो कभी खाली हाथ भी नहीं आती। ये उनकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है। डॉक्टर साहब आज भी एक खूबसूरत गज़ल हज़रत खातिर गज़नवी की अदब के शदाइयों और गज़ल के मतवालों के नाम लाई हैं कि जब उस जुल्फ की बात चली ढलते ढलते रात ढली, जब उस जुल्फ की बात चली ढलते ढलते रात ढली, फिर भी चिटकी फिर भी हंसी, देख के सब हालात कली। क्या खूबसूरत शेर है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इंतखाब। फिर भी चिटकी फिर भी हंसी, देख के सब हालात कली, और शम्मा का भी अंजाम न पूछ, शम्मा का भी अंजाम न पूछ, परवानों के साथ जली। और अब के भी तुम दूर रहे, अब के भी तुम दूर रहे, अब के भी बरसात चली, और इन आँखों ने लूट के भी अपने ऊपर बात न ली, इन आँखों ने लूट के भी अपने ऊपर बात न ली। और खातिर ये है बाजी दिल, खातिर ये है बाजी दिल, इसमें जीत से मात भरी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मक्ता है। जी चाहता है एक मरतबा फिर दोहराऊँ कि खातिर ये है बाजी दिल, इसमें जीत से मात भरी, जब उस जुल्फ की बात चली ढलते ढलते रात ढली। डॉक्टर साहब बे इंतहा खूबसूरत इंतखाब, और अब पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का तोहफा, आपकी पसंद का गीत, आपकी मोहब्बत हो, चाहत हो और प्यार के नाम। तशरीफ़ यावरी का बे इंतहा शुक्रिया, आपकी आमद से हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

और दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां मौजूद हैं हमारे बड़े मोहतरम लिसनर अपने अहल खाना के हमरा। आप हैं जनाबे शहरियार साहब, और उन्होंने न सिर्फ मोहब्बत भरा सलाम आप तमाम अहबाब की खिदमत में भेजा है, एक खूबसूरत गज़ल सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जो हम उनकी और उनके अहल खाना की नज़र कर रहे हैं। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे शहरियार साहब, और बच्चों की बहारें आप देखें, और जिस मोहब्बत चाहत और प्यार से आप हमारी बर्न में आते हैं, ये हमारे लिए बाइस इफ्तखार है। आपकी पसंदीदा गज़ल लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

0: Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे बचिए उधर की से, शॉप कीजिए सारी बुखार से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, बॉन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
5: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
7: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
6: सोफी ज्वेलर्स
7: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल इम्पोर्ट।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है, इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स, लिस्टर हिल्स साइंस पार्क, कैंपस रोड, ब्रेडफर्ड, BD71HR।
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ जाता है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
5: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
7: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
6: सोफी ज्वेलर्स
7: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
8: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
9: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
10: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229622
9: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
2: Listen on your PC or laptop The best Asian music online
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम,

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: मुहाने।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मोत्रिस दी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है, इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स, सिलिस्टर हिल्स साइंस पार्क, कैंपस रोड, ब्रेडफोर्ड, BD71HR।
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
5: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
7: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
6: सोफी ज्वेलर्स
7: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास।

0: और प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास
1: डीआर टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच दा बुक
2: सोने दे गजरे
0: सोने 0078।
3: Do you know there are 170,000

0: आपका ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास
1: डीआर टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच दबो
2: सोने दे गजरे ते सोने
0: 0078
3: Do you know there are 170,000

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: and online. AM and online.
1: The best Asian music online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन मीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बाद तो कूपर हॉल से

0: बैंक के जेवरात जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स 121 ओक लेन BD9 4QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, पॉन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।